मर्तबा रंग रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब तेरे वास तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तो कर मान महत्ता ते जापना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुदया गह बिनवत।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जो कहिजै कोट इंद्र इंद्रान सहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारे कर आज हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए रखो दास पाठ की लाज रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम तोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्तु रूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्तु अनूप दिखाई गुरु गोविंद

सहज सुपाई, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह चट्टी है। तुद डिठ सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास

संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा पिटे गुणतास, शांत सहज सुख मन उपजे।

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोहोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछोड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सीविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दे मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौन चौन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा। जाब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड़ उचारत पेदा, जाको पीव न पावत बेदा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

आप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित,

ज्यो राम राखै त्यो रहियै रे पाई। हर की महिमा किस कथन न जाई। रहाउ कबहु तुरे तुरंग नचावै, कबहु पाए पनहियो न पावै।

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियन, एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरन दुख जाय। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहां दे जिस पास बैठिया सोही है। सब नांदा विसाहु, सजन सचा पातशाहु, सिर सहां दे जिस पास।

पंडित होए के वेद बखाने मूरख नाम देओ राम जाने पंडित होए के वेद बखाने मूरख नाम देओ राम जाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वछलिया नाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब व्याध मटाई कोह नानक कृपा पई प्रभ पए सहाई सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होए विचारो तित कर गाव हो सोहेला सिव रिहो सिर जनहारो तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहेला होम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार सांबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल देहो सज्जन आसीसड़िया जा होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पाहो चा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ बेसोए चसया घड़िया पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बेमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कौ होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे
ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੋਕ ਕਰ

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु।

गए मसकत कार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी बिन सतगुरु के नैना पाए, बिन सतगुरु के नैना पाया। सतगुरु विचार रखे उनकर प्रगटक सुनाया, सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। जग

पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सता तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया, मूर्ख सतना जानी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया।

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करतार।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करन होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया।

शब्द मात्र ते उतार तरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर रामदास सार अपार परे, सत गुर मत गूढ़ बिमल

0: संतोख सरोवर बसे, अमे रस रसन प्रकाशे, मिलत शांत उपजे, दुरत दुरंत नासे, सुख सागर पायो तिंत, हर मग्न हुटे, संजम सत संतोख, सील सना होम फुटे, सतगुर परमान बिदने सिरयो, जग जस तुर बजायो, गुर रामदास कल उचरे, तै अपै अमर पद पायो।
1: जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो, धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो, नवनिध नाम निधान रिद सिद्ध ताकी दासी, सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनाशी, आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो, गुर रामदास कल उचर तैं हर प्रेम पदार्थ पायो।
2: प्रेम भगत परवा प्रेत पवली ना हुट्टे, सतगुर शब्द यथा अमें तारा रस गुट्टे, मत माता संतोख पिता सर सह समायो, अयूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायु, अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास कल उचर तैं जगत उदारन पायो, अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुरु रामदास कल उचर तैं जगत उदारन पायो।
3: जगत उदारन नव निदान भगतें पव तारन, अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारण, सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे, गुर प्रसाद पाई है तन दे जन बट भागे, ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो, गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
4: सेज सदा सह छावान संतोख सराय चो, सदा सील सुना हो सो है, गुरु सब समाचर्यो नाम टेक संगाद बो है, अजुनियो पल अमल सतगुर संग निवास, गुर रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर भास।
5: गुरु जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास, जिन को गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नास, गुरु जिन को सुप्रसन्न मान अभिमान निवारे, जिनको गुर सुप्रसन्न शबद लग पव जल तार, परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण पज कल कब पुगत मुकत सब गुरु लग।
6: सतगुरु खेमा ताणिया जुग जू समाणे, ਆਨ ਭਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਗਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ, ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਣ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਰ ਧਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਆ ਭਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ।
7: ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ, ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਖਿਆਤਾ, ਐਹਨ ਇਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦ੍ਰ ਜਾਵੈ, ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ,

साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जीवाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दिग चलाई तिग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर के

पौड़ी सतगुरु बिटो वाहरिया जिथ मिलिया कसम समा लिया। जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नी नेत्री जग निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से मन जा रहा। सतगुरै बोझता विलय किने विचारिया। कर कृपा पर उतारिया, कर कृपा पर।

कोड़ी साहिब होय दयाल कृपा करता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवानता कच में का महल पाए सी कस में पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा।